नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टिन्स ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है. 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे. हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
2: The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी. और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं. आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा. मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे.
2: Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery-cum-petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. The monsoon session of Parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. After his visit to Oman, Dr. Jaishankar will visit New York on 13 July to launch India's official campaign for the UN Security Council tenure 2028-29. He will then attend the third India-EU Trade and Technology Council meeting and interact with his European Union and Belgian counterparts in Brussels on 14th and 15th July. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that ethanol is not a new concept and has been in use for over a century. Addressing a gathering in Rajasthan, Mr. Puri said that the government welcomes constructive criticism of the government's biofuel blending program and assured that the government will incorporate suggestions into its work and make the necessary corrections. Mr. Puri also said that the idea of ethanol blending in India was first initiated during the previous Congress-led government. In the FIFA World Cup, Morocco stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over Canada in Houston, Texas today. And that is the end of this news bulletin.
3: Yan Akashwani Tura Knatum Soyngaba Sakanti Kon Pulsataya Station on Naram Chaksua. Nasimang Delhi Station on Ihuatats Kagaba Hindi Koborang Baksa, English Koborang Koba Jol Jol Knasona Matnaha. Program Rangko Bacheng Nas Kang Dal Ninam Gaba Chanchiwanan Chanting Program Rangko Bachengna. Plakung Telaga Pabos Turangoba, My Bad and Tangman Chani Ridunga by Aristotle. Yerang Baksa, talna thari sogoman program rang khona simang na somoirang baksa sul sul uyatinga tuduk sani jamano dokchi bonga baji ong ahana simang salnang sangma aruni dolni gapa isolna rang machelani git rang ko khna sona gataman gen do kholachio hajong composite program ko bana simang khna sogen sni bajiu deleni ko atat skha gaba hindi khoborang aro jol jol english khoborang ko basni bonga baji khna sona man gen Endri sangma aruni dolni rangpa isolna rang mathelani gitrangko sni chkhangba jiyo simangna ga matanggen jol jol sni kholgrikko aba soe cha ani chi samtang thangog ba rangko nosto kha ani gemen aganani ko bana simang khna sona mangen sni khola chiyo dungthang thang hindi film ni gitrangko khna sogen chet ba jiyo delhi ni hota chkha ga ba hindi ko borang chet chibonga ba jiyo english ko borang aro jol jol shilong station ni hota chkha ga ba salgro salaram adokni english ko borang hoba chet khola chi ba jiyo khna sona mangen Chet Sotpriyo Pringnam Thura program ko khna sogen, Chet Sotpri bunga o, Taal ni poido o, Sherwood School Thura ni rikhtame anosa CH Marak ni poriyat skagaba poido ko khna son baksa, Webster Moment Aruni Dol ni rikhtaba gitrang ko bana simang naga matanggen, Sku bajiyo delio ni ko watat skagaba hindi ko borang, Arol zol zol English ko borang ko sku bunga bajiyo khna son amangen, Sku chkeng bajiyo na simang Western Devotional Music program ko khna sogen, Bon kami sku kholachiyo bisarang ni kurang program o, Salanti porayani namgen irang ni gaman, Anity Moment ni Aganani Hoknas Bisa Tarikba Bisarang program Hoknason Baksa, Ayura Marakaro Tisi Moman Niran Gabagi Drankovana Siman Knason Agataman Gen. Yerangan Dal Pringna Tarisogoman program Rangwa. Dal Salna Tarisogoman program Rangwa Siman Somerang Baksa Sul Sul Yatinga. Chkung Bajiung Ahona Siman Delini Hotats Kagba Hindi Koboranko, Arozol Zol English Koboranko, Chkung Bonga Bajio Knasonaman Gen. Christian Sangma aro Epin Marak aro nidol nirang gapa isolna rang machalani gitrang ho chkhang bajiyo na simang naga matanggen chkhang khola chiyo delhi ni ho ta chkha gaba bibit parati program chisa bajiyo hindi ko borang aro english ko borang ho chisa bonga bajiyo khna sona mangen chisa chkhang bajiyo batchang sangma aro nidol ni aro ardip marak aro nidol nirang gapa isolna rang machalani gitrang ho ba ga matanggen chisa khola chiyo me chkrang ni program mo na simang meri bat ba angni khatao lestrina ch moment ni aganani ho khna son baksa Vitamin Chungizani Aruwarangi Namgizani Rangni Gaman Doctor J D Damarakni Aganani Hovana Simang Khna Sogen Arozol Zol Cherry Sangma Aruni Dolni Arobarjani Sangma Aruni Dolni Rangabagi Drankovana Simang Naga Matangen Chigini Bajiyo Deleoni Hotats Kagba Hindi Koborang Chigini Chkang Bajiyo Gristar Sangma Aru Grover Marak Aruni Dolni Rangaba Isolna Rangmachelani Gidranko Khna Sogen Chigini Holachiyo Deleoni Hotats Kagba Vivit Parati SMS Ke Bahane BBS Ke Tarani Program Chigi Supongbong of Vivit Parati Jaroka program, Sabajio Vivit Parati Hit Super Hit program, Sakolachio Vivit Parati Manchaigit program, Governor Simang Khna Sogen, Ganibajio Salzachin English Koborang, Ganishibong or Hindi Koborang, Ganikolachio Vivit Parati program, Gatambajio Hindi Koborang, Gatambongabajio English Koborang, Arabon Kamin Simang Hindi Koborang Hogatamskangbajio Khna Sonaman again. Yerangan Dal Salna Tari Sogoman program Rangwa, Absandaket Alatamna Tari Sogoman program Rang Governor Simang Somerang Baksa Sul Sul Yetinga. Atamni dokbonga baji ong ahon simang shilangoni ko ta chkha ka ba chko borang ko khna so naman gen sixton marak aruni dolni rangpa isolna rang mathelani gi trangko na simang na dokchi bonga baji ga matangen dok khola chiyo na simang ni khnan skebi ateng ba isolna rang mathelani gi trangko ga matangen dok sotpunga o phajilart marak ni dokada mani rangko ba na simang khna so gen Sni bajiyo dungthang thang hindi film ni gitrang ho ga matanggen sni khola chiyo delhi ni ho ta chkha ga ba bibit parati program Chet bajiyo hindi khoborang chet bonga bajiyo english khoborang ko bana simang khna sogen chet chkhang bajiyo western devotional music program ko na simang khna sogen chet khola chiyo delhi ni ho ta chkha ga ba khalsu sani english khoborang chet sokpri bonga hindi khoborang sku bajiyo english khoborang sku chibong spotlight program sku khola chiyo bibit parati program chkhang bajiyo hindi khoborang chkhang bonga bajiyo english khoborang aro bon kamme bibit parati program ko chkhang chkhang bajiyo khna sona mangen yerangan dal phringna da al salna aro dala thamna thari sogoman program rangwa Tuk-tuk sani jamano na simang mengeban program ko kena sona mangen. Yan Akashwani Tura.

रोगल प्रचार सम्बन्धे जिद कुनुबला कुनुबला पुसुतरी मन भाई और मनतरी आलदा जानवर गलबाय पार हो पाए संक्रमित जिंगो मुर्गी पोकामाकर कुकुल बिलई और आलदा जंगली जानवर तरी सम्पर्क आहला पड़े जुनटिक रोगल संक्रमण हो पाए प्रमुख पशुजनित रोगल भितरनी हले केट स्केच फिवर टिक पेरालाइसिस राउंड वर्म हुक वर्म खाउस और रेबिस आहाकल दिन महत्व ए दिन पुसुगल भितरनीके सुरे जावा बीमारी और उमरतरी हुआ समस्या गलगे जोर दिया इद मनगल भितरनी उचित कदम आगबाराय ए दिन उद्देश्यरा हले ऐतिहासिक उपाय ए बीमार गलतरी किंके दुर्भाय थाकिब पाए ए पशुजनित बीमार गलतरी दुर्भाय थाकिबगे हले साबान और साफ पानी दिए हाथ धोए निजेके साफ सिधेके राखिब लागे मूसा पोका माकर हुइल जदि बचे थाकिब लागे खावा दावा जिनिस गेलेगे सुरक्षित रूपे संग्रहित करिब लागे आरो पशुगुलो जाते आमाके ना कामराय ना कासरे इदतरी सावधान थाकिब लागे इदै हुले विश्व जनसृष्टि दिवस पालन करला मुख्य उद्देश्य जाते मनगुलो सुजाग हय घरनि थाका कुकुल बिलै पोका माकर कीट पतंग हागल गुरु चरे हांगस इदतरी अल्प सजागता रूपे थाकिब लागे जाते उमल बीमार मनगल भाई पार नहाय आरो मनगल बीमारो उम भाई पार नहाय इदै हुले ए दिन ल माना बला मुख्य उद्देश्य विश्व जनसृष्टि दिवस केने पालन करा हय एला उपलक्षे आपने गले पुथिका हुनिब फले एबार आकबर बनिले शिल्पी सुरा महाजंगलाके गावा आरोग्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप ल उपनि लिख सुन्दर समाज शक्ति गान কথা হলে হেল্প গ্রুপ রাজি জোনা কানিলে গাঁও শহর নেই।

प्रिय श्रोता भई बहिनीगल सेल्फ हेल्प ग्रुप लो पनि लिख सुन्दर एगरा रचना शिल्पी सुरमा हाजंला आवासनिके अपने गल एलाइलाइ हुनिबो पाले एबार अकबर मुनिले शिल्पी सुधा हाजंला आवासनिके आमला हुदलानिले गामसा गिल आरो राङा पाथिन्दो ए सुन्दर पोसागलाव पनि लिख गान्दा

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रूपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू

0: ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
5: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of Regional Air Connectivity Scheme, Viksit Udaan, in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
8: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के इलाकों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू हो जाएगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरूआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,100

0: Nasimang epin marak arni dol ni girang kok na sona man hari nu mutala ni girang kota ni somerang babu na ha jol jol nasimang gelo lag ba be pati bom baksana chisa ba ju hindi go bor chisa bom ba ju english go bor kok nang na man gen yan akashwani tura
1: कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा, हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा, और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
2: जी,
1: हैं
2: जी, जी।
1: उसमें कोई
2: बहुत
1: बात
2: बड़ी
1: नहीं।
2: बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए
1: जी।
2: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
1: नहीं,
2: आपने
1: नहीं,
2: और
1: नहीं, नहीं,
2: आपसे
1: नहीं।
2: कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना?
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता, वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है
2: हाँ
1: वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
2: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें आपके
1: नहीं,
2: गीतों को?
1: नहीं, नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
2: हाँ
1: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं।
2: हुँ।
1: बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है,
2: हाँ।
1: तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
2: वो लिख
1: उसको
2: लेता
1: ले
2: है।
1: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता।
2: अच्छा।
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
2: अच्छा।
1: हमने फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो गया अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
2: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
1: बिल्कुल
2: आपको
1: लिखवा,
2: सिचुएशन बतानी पड़ती है।
1: हाँ जो भी सिचुएशन बताएंगे
2: बहुत खूबसूरत
1: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
2: हर रिकॉर्डिंग में
1: हर रिकॉर्डिंग में मैं रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग खोते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें

0: इम्प्रूव हो जाती है।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
1: नहीं,
0: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो, जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना, ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा।
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद
0: एक
1: का?
0: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी।
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणे का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूं, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी।
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से।
0: ओडली
1: अच्छा, म्यूजिक,
0: चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी, मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते, कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र भी आप
1: जिक्र
0: कर रहे थे।
1: किया। तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं।
0: अच्छा।
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है वो है।
0: जी, जी।
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या।
0: हाँ।
1: पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
0: अद्भुत,
1: ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा।
0: हाँ,
1: लेकिन मेरी औकात ही क्या, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
0: उनकी महानता देखिए आप,
1: लेकिन उनकी ग्रेटनेस देखिए। हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया, तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं, लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ।

0: और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि
1: उन्हें।
0: बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
1: जी जी,
0: लेकिन उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: मैं
1: वाला,
0: कुछ नहीं लेने वाला।
1: बहुत बड़ी बात सर,
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई है और मैं भावुक हो गई हूँ।
0: नहीं,
1: एक गाना पहले सुन लेते हैं।
0: एक गाना हम लोग सुनते हैं, मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है
0: वैसा गाना नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर और वो हो गया। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन बट AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नए नए तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोर्ड पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोर्ड पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
0: जी जी।
1: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी, जी।
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी
0: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है।
1: बिल्कुल।
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही, तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस। काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया।
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए। 97 में गाना बाहर आया, ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है
1: जी।
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ।
1: अच्छा।
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला, ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है, और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं तो अरे यार मैं तेरे को ही फोन लगा रहा हूँ तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ तब तक तू आ गया। वहां जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ। अंदर गया, बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा, ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैं लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो।
1: बिल्कुल।
0: तो कुछ ना कुछ
1: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी
1: जी।
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन सबसे मैं मिला हूँ
1: जी। और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए, गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: विविधा।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
7: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
6: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा।

बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर। अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का, अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है। जो भी चीज पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है। जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था। सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना। तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी कभी गम कभी धूप कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर, असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
1: डियर सर, सेवा में निवेदन है।

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे साथी कहने की आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है। और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

0: वहीं लेकिन हमारी साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते, न सपने, न लोग, न जिंदगी। हर किसी के हिस्से में कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं, लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे कौर साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है। जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाहत जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है, बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो, ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत, और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं, और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, क्या हमारे जीवन में हर चीज मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं है, या जिन चीजों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है, या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफर जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे कि मैंने भी कहा जो मेरे आका, पर मार्केट सुरीला सफर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीजों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो जरूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कहने की नेहा जी, इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीजें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नजरिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीजें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिला है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्नाडे, आशा भोसले, बत्तीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना, ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं। और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फॉर्मूले के पीछे हम अपना जीवन

लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मॉनसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है, इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है, सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा। तो ये इनका कहना है। साथ ही कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा भाई, सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही।

गौर साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है, जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहतें और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अदद नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद यही शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे कौर साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही हमारे कौर साथी ने। इतवार का क्या प्लान है, ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बताइए। और हमें जरूरत है कि इस गीत को किसने गाया है, ये भी आप हमें बताएं।

0: जरूरत।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज इतवार है फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी, उनके फरमाइश की एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी को देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं पल पल पल कैसे कटेगा, ये हमने पूछा था तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने एक किस्सा लिख भेजा है कि जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि 4 हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं क्योंकि 4 हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जरूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी क्योंकि प्रकृति इन जरूरतों को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया. फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना. के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक क्लिंटोन की आवाज में आपने ये गीत सुना. इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत. कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं. हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ. भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं. कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है. मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है. बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं. आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा. हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती है और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूं. भाई एक रिश्ते की

जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं?

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज

0: साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दिने दिने
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल

0: राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रूपये की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह।

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार, होशियार।

0: गलत बताया है, जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरल के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today released the first installment mother sanction of over 25,000 crore rupees to the states under the mission through video.

0: आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: श्री मोहन नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से, समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है, और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे। कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली। तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई, और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
2: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
3: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजाति आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में, और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है, और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किया जाए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टॉप डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहां पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया, और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है, और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
2: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है? जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
3: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गांव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया, और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन, व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, उनमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किया, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं। आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
2: सर, आदिवासी और जनजाति समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
3: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रह करके तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के। कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णा मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए, और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में, और जो पलायन था। फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गांव गांव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा एक गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
2: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
3: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी है उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवर हेड टैंक के पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इस वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया, और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है, और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहाँ के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
2: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे से टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी तो वो भी जल का संचयन कर सकें।
3: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए, फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा। कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये तीन बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये तीनों बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके। उसके लिए हमारे घर पे की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं। अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए और छोटे छोटे काम अपने गांव के, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके। इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है, मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपने रोके। फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोनाघाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों का, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोनाघाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।

0: संत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया, और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए, और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा, ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव कमलेश रावी साहू हनी हिमांशु डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत राजे जाधव संचित वायात सर्वद देशमुख प्रथमेश देशमुख प्रणाली सानवी और कल्पना की आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति मनहर उदास की आवाजें सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
1: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
3: कौन रानी इरावती?
1: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
3: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
1: अरे बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
4: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
5: भला हम कौन होती हैं
4: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
5: चलो।
1: ओह, इन पुरुषों पर फूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
3: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो यही देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
1: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
1: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
1: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का, हम चले यहाँ।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकलावलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देके कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए। मैं नाक को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: ओ जी ओ मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाई देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आज ये गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: मर गया महाराज, मर गया। मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी, भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
2: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाई था कि काल शरीर का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े
5: हैं। अरे काल मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला न हो।
5: मेरा तो अन्नंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम, तनिक संभालिए, धीरज से काम लीजिए।
5: महाराज, मैं आपका मान सका हूँ, सिनाथ मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
2: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहाँ ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहाँ ले जाओ।
2: देव की कैसी आज्ञा।
5: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हो वो क्षमा की।
3: नहीं नहीं नहीं, अरे गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
2: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा डली हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
2: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना,
6: और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से ब्रह्मवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन?
1: हरि गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
2: ये देखो महारानी की अंगूठी।
1: अंगूठी तो उन्हीं की है।
2: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो। ओह, यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
2: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
1: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
3: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
2: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
3: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
0: स्वामी की जय हो।
1: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये छोटी रानी इरावती है।
0: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर डाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
2: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
0: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
4: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी?
0: स्वामी की जय हो।
4: प्रिय,
5: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
4: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझे अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
4: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
6: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ आ, उसे भगाने चल।
0: चलिए
6: महाराज, घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सूचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे?
7: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
7: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
7: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन,
0: ठहरिए आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज रुकिए, उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी इरावती,
1: सखी बकुलावलिका, ये कैसा है? बकुलावलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
2: ओह, ये तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर के सामने आके रहा।
6: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सेकी बकुला वलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
7: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
2: देवी यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे प्रश्न देता?
7: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
8: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार, महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
9: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार, वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने

महाराज को बहुत से अनमोल रत्न हाथी घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार

0: विदिशापति महाराज अग्निमित
1: ब्रह्मगमन उत्सव में बला रहे
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निमित
1: ब्रह्मगमन उत्सव में पधार रहे हैं।
2: जय हो विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
3: देवी सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
2: विराजिए देव।
4: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
3: प्रणाम भगवती।
4: आपके मन की सात पूरी हो।
2: आर्य पुत्र फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
3: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
2: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
3: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
5: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
3: ले आओ।
5: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज प्रस्तुत हैं।
6: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
3: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
6: महाराज हम लोगों ने संगीत सीखा है।
3: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
2: मालविका आके देव, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
6: अरे राजकुमारी आप यहाँ? जय हो।
7: राजकुमारी की जय हो।
2: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
3: मालविका राजकुमारी?
6: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
3: कैसे?
6: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
2: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
3: भद्रे बताइए, ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
6: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
3: फिर क्या हुआ?
6: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
4: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
3: भगवती आप?
6: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
4: हाँ वही है। प्रणाम भगवती।
8: कल्याण हो।
3: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
4: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
3: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
4: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
9: ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है, यहाँ तो दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
3: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
4: भैया आप ही तो
3: मेरे जीते जी राजकुमारी जी।

0: रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
1: अरे श्री क्या हुआ, क्या सब लोग एक रुक क्यों गए?
2: जान प्यारी है वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
1: कोई हुआ ना जिसका भय था,
0: चाहिए नहीं सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: हमारे सैनिक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघु लुहान होकर इधर आ रहे हैं और डाकुओं ने भैया को अकेले ही खेल दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़े। हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूट कर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
5: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
5: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
5: फिर क्या हुआ?
2: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
5: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
5: जय सेन।
4: आज्ञा देवी।
5: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
4: देवी की कैसी आज्ञा।
5: मालविका इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
6: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजाई करते हैं।
7: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
8: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं।

0: होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8, 10, 12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की। पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी। और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं। बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहाँ गाना सुनते हैं।

0: आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी,
1: ओहो हो हो,
0: और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा

0: तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है. हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है, शायद अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से. और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे. तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी. तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो. तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी. तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे. तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे.
1: हाँ, हाँ.
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है. इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है. और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में.
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा. काला नाग.
1: हाँ.
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल.
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग. सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो. आई विल नेवर फॉरगेट ये. बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना.
1: हाँ बिल्कुल.
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे.
1: अच्छा.
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग.
1: अरे गजब.
0: तो बहुत मजा आता था. तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे. तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को खुरदने की जरूरत की थी.
1: बाप रे.
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में. बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में. तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के.
1: बिल्कुल. उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं. एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं.
0: हाँ,
1: जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक. हाँ. वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना.
0: ओह, मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है.
1: बिल्कुल.
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती. मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है.
1: सिर्फ सुना है.
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की.
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश.
0: ओ,
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है.
0: करेक्ट.
1: वहां
0: करेक्ट.
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है. तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ.
0: करेक्ट.
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था.
0: बहुत ही, बहुत ही. और
1: बहुत
0: उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली.
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था.
1: ऑफ कोर्स.
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो. अगेन अमित जी का वो कमबैक था. आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी, और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी. तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे. राइट. सब लोगों को ऐसा रहा, आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे. और पापा बहुत कूल हुआ करते थे. मतलब हाँ ठीक है, ओके ऐसे. मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे.
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ.
0: Exactly.
1: बच्चन के सामने विलेन और पहले

0: जो लोग विलेन करते रहे थे, जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है,
1: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा, वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है,
0: अपना फर्ज निभाओ,
1: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
0: बिल्कुल
1: प्रेशर तो बनता है, इज व्हाट आई थिंक। लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
0: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है?
1: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। अब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने

0: पढ़ अपने घर पर होगी, लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट. तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ. लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो. ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा. ये हमेशा रहता था. और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो.
1: ओहो, करेक्ट.
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना. इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट. तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ, फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं. तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे.
1: बिल्कुल. सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था. मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से.
1: अच्छा.
0: हाँ. और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था. जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी. और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था. दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट एक एक घूट ऐसे करके. तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे.
1: अच्छा.
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो. वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे. और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना. बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं. मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है.
1: ओके.
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है. और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी. और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे.
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की. कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे. पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे. फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था. पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है. आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो.
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं. बिल्कुल नहीं.
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखते बैठेंगे.
1: सख्त मनाही.
0: सख्त मनाही. बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है. और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे. तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था. तो वो उन्हें देखना था इसलिए हम लोग

0: गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़ के। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओहो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन, पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: ओके, फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल,
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त और इसलिए उन्होंने किया। वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन,
1: कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के,
0: हाँ।
1: ऐसी काफी

0: फिल्में हैं, और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
1: तो मुझे
0: काम
1: वो
0: किया,
1: याद
0: बिंदु
1: आ गया,
0: जी के
1: वो
0: साथ
1: सो रहे
0: काम
1: हैं और
0: किया।
1: वो जगाने आती हैं।
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: अर्धसत्य
0: दिखाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही
1: तो
0: अलग,
1: क्या लीग थी वो?
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार।
1: हाँ।
0: एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर
1: लेकिन
0: वो इतनी
1: ये कुछ
0: ओवर द
1: अलग
0: टॉप
1: था।
0: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी, तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी, बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है।
1: हाँ।
0: ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां इसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकटनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी, तब
0: और
1: तक
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ।

0: है,
1: हाँ
0: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म
1: फिल्म को
0: को
1: मिला
0: मिला
1: बाकायदा।
0: नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे,
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे।
0: इंटेंस काम कर रहे थे, बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसे मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स आठ आठ दस दस फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमिडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं,
1: बिल्कुल।
0: राइट? आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है, क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे,
1: जी
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप दो प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा बना है, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे।
1: राइट।
0: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है, तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें अभी हमें कैसे मोल्ड करना है, एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया, इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु
1: गुप्त
0: पुरुष मिली,
1: मिली।
0: गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी, तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था,
1: बिल्कुल।
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है,
1: जी
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है, तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल। यहां गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं
0: श्योर
1: क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलकी मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जलवों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रात गुजरे, दिन जो भी गुजरे अब तेरे साथ गुजरे। न वक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिक्र है, तू ही मेरी मंजिल है, मेरी सांसों में बस तेरा ही जिक्र है।

0: कल रात मेरे सिरहाने पर चांद का एक टुकड़ा बिखरा हुआ था। शायद ख्वाबों में आकर तुमने ही उसे रखा था। सुबह सवेरे जब नींद खुली तो गुलों की चादर बिछी हुई थी। शायद तुम्हारे कदमों की आहट यहां कैद हो गई थी। दरीचे से बाहर झांका तो आंगन में मोगरे के फूल खिले हुए थे। शायद तुम्हारी मीठी हंसी की गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं। शायद तुम्हारी मखमली जुल्फों को छूकर ही वो यहां आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जल उठते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटको जुल्फ से

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है, फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूं फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

एक रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा।

आंखों से खींच कर तुम्हारे दामन को, तुम्हारी एक एक अदा को पलकों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम में ही मैं जी लिया। जब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू सी महक जाती है, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मत भरी शामों सी बहक जाती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बन जाती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो। छोड़

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

तरानी नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म क्रांति से।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

कथा की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट राम कृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। बिना वक्त गवाए वाधवा अपनी दो प्लेटून्स के साथ मोर्चे पर रवाना हो गए। सरहदी इलाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों के लिए जानी जाती है, जहां कांटेदार बाड़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियां ज्यादा ही हैं। लिहाजा कहां बंकर हैं, कहां खाई यानी ट्रेंचेस, कहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहां मोर्टार्स, कहां कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन सभी खतरों को चुनौतियां देते, अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी, जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था। कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए, खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हथगोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन्स से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

एक और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जांबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

सौर आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी वक्तव्य में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के नवोन्मेषकों की अत्यधिक रुचि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल पर अब तक हजारों इच्छुक उद्यमियों और नवोन्मेषकों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन साझा करने की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यूकेएमटीओ ने बताया कि यह हमला होदेईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। यूकेएमटीओ ने बताया कि जहाज के होदेईदा से 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अज्ञात सशस्त्र हमलावरों द्वारा हमले की सूचना दी है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और खेलों में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर और हर लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से। फ्रांस और मैक्सिको विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। विंबलडन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू हुए। भारत ने 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 10 पदक

0: के साथ विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में अपना अभियान संपन्न किया और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का सीवा संस्करण आज देश भर में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिकेट के रोमांच के साथ आज के कार्यक्रम को, जहां लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इस समय महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और इस मैच की और क्रिकेट के मैदान की ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, इस समय फाइनल मुकाबले में क्या ताजा अपडेट है?
1: शक्ति, पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और एमी जोन्स और डेनियल वायट होज ये दोनों ही अपना विकेट गंवाकर वापस जा चुकी हैं पवेलियन। तो इंग्लैंड जो है 36 रन पर दो विकेट गंवा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो दोनों विकेट हैं वो किम गार्थ और एनेबल सदरलैंड ने लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना नौवां फाइनल आज खेल रही है और 6 बार इससे पहले विजेता बन चुकी है। और इंग्लैंड की जो टीम है वो अभी तक अपनी धरती पर टी20 विश्व कप का कोई भी मुकाबला नहीं हारी है। इसी के साथ अगर हम इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 45 मुकाबले दोनों के बीच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 22 और इंग्लैंड ने 20 मुकाबले जीते हैं। तो यहां अभी ऑस्ट्रेलिया की नजरें अपने 7वें खिताब जीतने पर होंगी, वहीं इंग्लैंड जो है वो 2017 के बाद एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतने पर जोर कसेगा।
0: जी बिल्कुल, अपनी नजरें रखेगा एक और ट्रॉफी पर, लेकिन कह सकते हैं कि आज के इस रात में किसी एक टीम का रिकॉर्ड टूटना जरूर तय है। इससे पहले भारत को कल इंग्लैंड के साथ दूसरे टी20 मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन का योगदान दिया। 191 रन के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने जैकब बेथल के 46 गेंद पर नाबाद 76 रन की पारी की बदौलत एक ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे आ गया है और अगला मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंगम में खेला जाना है। हालांकि इस मैच की सबसे खास बात रही युवा वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। महज 15 वर्ष 99 दिन की आयु में डेब्यू करते हुए वैभव ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का कीर्तिमान अपने नाम किया। वैभव ने खुद अपने अनुभव कैसे साझा किए, सुनते हैं।
2: काफी अच्छा लग रहा है, ड्रीम ही था किसी के लिए भी इंडिया खेलना ही सबसे बड़ी बात होती, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने फादर को जाके रूम में बताया और किसी से मैंने बात नहीं की, और जो भी मेरे सर हैं, जो भी मतलब मेरे जो साथ रहते हैं उन सबों को बताया। पापा खुश हुए और बोले बस कि जो करते आ रहे अभी तक वही करना है, प्रेशर नहीं है, बस अपने गेम को बैक करना है।
0: विशेष, जब भी वैभव मैदान पे उतरते हैं उनकी नजरों में कोई रिकॉर्ड होता है या कोई कीर्तिमान होता है, डेब्यू के साथ इस खिलाड़ी ने कितने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए?
1: देखिए शक्ति, वैभव जब भी मैदान पर उतरते हैं अपने खेल से सभी को प्रभावित करते रहते हैं। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स और आंकड़ों की बात करें तो वैभव 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में विजय हजारे ट्रॉफी में भी डेब्यू कर लिया था। उसके साथ भारतीय खिलाड़ियों में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में, 35 गेंदों में उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। उसके बाद 2008 में, दिलचस्प बात यह है कि 2008 में आईपीएल जो है शुरू हुआ और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का जन्म हुआ, तो ये भी रिकॉर्ड उनके नाम है। और अभी उन्होंने अंडर 19 विश्व कप फाइनल में 80 गेंदों में 175 रन की पारी खेलकर सभी को बहुत प्रभावित किया और इसी के साथ उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और उनको सचिन से बहुत रिलेट किया जाता है शक्ति, तो इसमें बताना चाहूंगा कि सचिन और वैभव की उम्र में, डेब्यू की उम्र में 1 साल का अंतर है और जो पहला स्कोर दोनों ने बनाया था उसमें भी सिर्फ 1 रन का ही अंतर है।
0: जी बिल्कुल, सचिन ने अपने पहले मुकाबले में 15 रन बनाए थे और वैभव 14 रन बना सके, लेकिन एक बहुत बेहतरीन ट्रेलर दुनिया के क्रिकेट जगत के लिए। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप की, जहां राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में होगा, वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इससे पहले फ्रांस और मोरक्को ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं कल खेले गए मैच का हाल।
3: फ्रांस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस के इस जीत के नायक किलियन एम्बापे रहे, जिन्होंने 69वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल किया। फ्रांस को मिली पेनाल्टी का फायदा उठाते हुए एम्बापे ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। ये एम्बापे का इस विश्व कप में 7वां गोल है। हालांकि फ्रांस

0: के लिए ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं रहा। पराग्वे ने पूरे मैच में मजबूत डिफेंस के बल पर फ्रांस को ज्यादा मौके नहीं दिए। पहले हाफ में फ्रांस के ज्यादातर शॉट का गोलकीपर ऑरलैंडो गिल ने आसानी से बचाव किया। दूसरे हाफ में लगातार बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार 69वें मिनट में फ्रांस को पेनाल्टी मिली और एम्बापे ने उसे गोल में बदलकर टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। इसके बाद फ्रांस ने बढ़त को अंत तक कायम रखा और 1-0 की जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
1: The French machine does indeed march on.
0: इससे पहले कल रात राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में मोरक्को ने सहमेजबान कनाडा को 3-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मैच की शुरुआत में कनाडा ने आक्रामक खेल दिखाया और कई अच्छे मौके बनाए, पर टीम इन मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही। इसके बाद 50वें मिनट में फ्री किक पर हकीमी के पास को अजेदीन ओनाही ने शानदार गोल में बदलकर मोरक्को को 1-0 की बढ़त दिला दी। 82वें मिनट में ओनाही ने एक और गोल करते हुए मोरक्को की बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद स्टॉपेज टाइम में सोफियाने रहीमी ने तीसरा गोल दागकर टीम की जीत पर मोहर लगा दी।
2: Brahim Diaz and now Rahimi to put the gloss on it.
3: You got players of this quality. The goals can come at any moment.
2: The Atlas Lions, the first team to book their place in the quarterfinals of this FIFA World Cup.
0: अब क्वार्टरफाइनल में मोरक्को का मुकाबला फ्रांस से होगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
4: और फीफा के रोमांच के बाद अब बात विंबलडन के ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट की, जहां राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। आज पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में नोवाक जोकोविच का मुकाबला रोमान के साथ जारी है। वहीं यानिक सोनर का मुकाबला अब से कुछ देर बाद जापान के शिंतारो मोचीजुकी से होगा। इसके अलावा दो अन्य मुकाबले खेले जाने हैं, जहां महिला सिंगल्स में जेसिका पेगुला ने ईवा जोविका को हरा दिया है, जबकि आर्यना सबालेंका और कोको गौफ भी अब से कुछ देर बाद अपने मैच खेलेंगी। तो आइए जानते हैं किन किन खिलाड़ियों ने इस दौर में अपनी जगह बना ली है।
5: फ्रेंच ओपन चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटियो बेरेटी ने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो विल्टानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल चौथे ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
4: विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में भावना ने फाइनल्स में अपनी ही देश की पूजा को शूटआउट में हराकर महिलाओं का पैरा रिकर्व का खिताब जीता। इसके साथ ही भारत का यादगार अभियान 10 पदकों के साथ समाप्त हो गया।
6: चेक गणराज्य की नोवे मिस्टो में विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में भारत की भावना ने फाइनल में अपने ही देश की पूजा जथ्यान पर एक शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता में भारतीय अभियान का समापन किया। पूरी तरह से भारतीयों के बीच हुए इस फाइनल मुकाबले में भावना ने निर्णायक दौर में संयम बनाए रखा और टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। वहीं पूजा जथ्यान को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने इस प्रतियोगिता का समापन 10 पदक के साथ किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। भारत की स्वर्ण पदक की सूची में दोनों मिक्स टीम स्पर्धाओं की जीत भी शामिल थी। शीतल देवी और श्याम सुंदर स्वामी ने फाइनल में इंडोनेशिया को 147-143 से हराकर कंपाउंड मिक्स टीम का खिताब जीता, जबकि भावना और हरविंदर सिंह ने इंडोनेशिया पर 6-2 से जीत हासिल कर रिकर्व मिक्स टीम का खिताब अपने नाम किया। हरविंदर सिंह और सुंडी विजय ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स तथा भावना और पूजे जथ्यान ने पैरा रिकर्व महिला डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
4: और अब चलते हैं स्क्वाश की तरफ, जहां तन्वी खन्ना ने SRFI PSA चैलेंजर्स टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई में खेले गए फाइनल में तन्वी ने मिस्र की फरीदा वालिद को हरा करके ये खिताब जीता।
7: थर्ड सीड तन्वी खन्ना स्टेज अ रिमार्केबल कम बैक टू डिफीट इजिप्ट सेकेंड सीड फरीदा वालिद आफ्टर बीइंग टू गेम्स डाउन द स्कोर लाइन रीडिंग 8-11, 2-11, 12-10, 11-9, 11-7 इन तन्वीज फेवर क्लिंच द विमेंस टाइटल एट द HCL SRFI PSA चैलेंजर टूर्नामेंट एट मुंबई. तन्वी लुक्ड हेडेड फॉर ए स्ट्रेट गेम्स डिफीट आफ्टर ट्रेलिंग 4-8 इन द थर्ड गेम बट फॉट बैक ब्रिलियंटली टू टर्न द कॉन्टेस्ट अराउंड इन 45 मिनट्स. इन द मेन्स फाइनल मलेशिया एम साइफिक कमल रिकवर्ड फ्रॉम टू गेम्स डाउन टू बीट इजिप्ट यासिन शॉडी 6-11, 9-11, 11-8, 14-12, 11-8. The tournament witnessed high quality competition throughout the week. For Sportscan, S. Kishore from Mumbai.
4: तन्वी शर्मा ने इस जीत के साथ बाद अपने अनुभव स्पोर्ट्सकैन की टीम के साथ साझा किए. सुनते हैं उन्होंने क्या कहा.
8: Now I'm just very speechless because it's a long time since I won such a big tournament and she's a really good player. She's been winning everything and the last time we played she won the match 3-2. It was very close. Just wasn't playing my best in the beginning of the match and somehow at 8-4 something in me just turned, got my confidence back and from there I found my length, I found my drops, saw that she was getting tired and I just held on to that and I kept pushing till the end.
4: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल केवल एक फिटनेस गतिविधि नहीं बल्कि देश के स्वास्थ्य और जागरूक करने के लिए विकसित भारत बनाने का एक जन आंदोलन है. नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज 80वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में श्री मांडविया ने लोगों को फिटनेस की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया.
9: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है. एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है. साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है. क्यों न हम साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है.
4: तो कई समाधान लेकर के आती है इस फिटनेस वाली साइकिल और इस अवसर पर मॉडल और अभिनेता नासिर अब्दुल्ला ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह जल्दी उठना उनके लिए बेहद सुखद अनुभव रहा.
10: A pleasure to wake up at 4:15 in the morning to be able to make it here. So the energy was wonderful and itne sare log aaye hue the participate in this beautiful Fit India running for fitness. The Minister of the Sports as well to give us added encouragement about it. So it's wonderful. Cycling is a very simple exercise.
4: अब बात करते हैं बैडमिंटन की क्योंकि आज पूरी दुनिया विश्व बैडमिंटन दिवस बना रही है. ये दिन हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है. इस दिन की शुरुआत बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा 2022 में की गई थी जो 5 जुलाई 1934 को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना की याद दिलाता है. और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दिन कुछ और भी खास हो जाता है क्योंकि आज ही भारत की सबसे सफलतम बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक पीवी सिंधु का जन्मदिन है जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक और विश्व चैंपियनशिप जैसे कई कीर्तिमान अर्जित किए हैं.
11: She becomes the first player from India ever to win gold at the World Badminton Championships.
4: तो एक बहुत शानदार खिलाड़ी पीवी सिंधु को स्पोर्ट्सकैन की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने भारत में बैडमिंटन की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी है. और अब अंत में चलते चलते वापस एक बार लॉर्ड्स में खेले जा रहे T20 विश्व कप महिला विश्व कप के फाइनल के स्कोर पर नजर डाल लेते हैं जहां 8 ओवर हो चुके हैं और इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 48 रन बना लिए हैं. और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र

0: बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्हें कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको

0: लिंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के प्रभात कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह फैसला बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए से निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।

कार्यता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 2 ओवर में 1 विकेट खोकर 17 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।